0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ इतना खूबसूरत या इतना भव्य देख लिया हो कि जब कोई आपसे पूछे कैसा था तो आपके पास शब्द ही ना हो, आप बस मुस्कुरा दें या खामोश हो जाएं। अक्सर हम परमात्मा के बारे में बड़े बड़े विशेषण इस्तेमाल करते हैं, वह महान है, सर्वशक्तिमान है, विराट है, व्यापक हैं, तेजस्वी हैं। लेकिन कबीर साहब आज एक बड़ी ईमानदारी भरी बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं उस मालिक को कोई विशेषण दे नहीं सकता, अगर मैं उसे कुछ कहता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आज का दोहा शब्दों की लाचारी और अनुभव की विशालता का है। आइए जानते हैं उस मौन के पीछे का सच। भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं क्या जानू राम को, नैनू कबहू न दीठ।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, भारी कहूँ तो बहु डरो। अगर मैं उस परमात्मा को बहुत भारी, बहुत बड़ा या विराट कहूँ तो मुझे डर लगता है। डर इसलिए नहीं क्योंकि भारी कहने से वह मुझसे बहुत दूर हो जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ जिसे मैं छू नहीं सकता। और हल्का कहूँ तो झूठ, अगर मैं उसे अपने जैसा साधारण या हल्का कहूँ तो यह सरासर झूठ होगा, क्योंकि वह तो इस पूरी सृष्टि का आधार है। कबीर अपनी सीमा स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं क्या जानूं राम को, मैं उस राम को, उस तत्व को भला कैसे जान सकता हूँ। नैनू कबहू ना दीठ, क्योंकि इस चर्म चक्षुओं से, इन भौतिक आँखों से तो मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। कबीर यहाँ यह समझा रहे हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे आप तौल सके या जिसका वर्णन कर सकें, वह तो एक एहसास है। जिसे एक गुंगा व्यक्ति गुड़ खा ले तो वह स्वाद तो जानता है पर उसे बयां नहीं कर सकता। परमात्मा का अनुभव भी वैसा ही है, जो जानता है वह बोल नहीं पाता और जो बोलता है वह शायद पूरी तरह जानता नहीं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा गौर कीजिए, हम कितनी आसानी से ईश्वर के नाम पर दावे करने लगते हैं। हम उसे अपनी छोटी सी बुद्धि के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, पर क्या असीम को सीमाओं में बांधा जा सकता है? आज कोशिश कीजिए उस अज्ञान को स्वीकार करने की। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ की परिभाषा जानते हो। कभी कभी बस यह कह देना कि मैं नहीं जानता, ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। उस राम को परिभाषाओं में मत ढूंढिए, उसे अपनी धड़कनों में, अपनी सांसों के मौन में महसूस कीजिए। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से उसकी पहचान शुरू होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।

0: करा आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग
1: प्रेम मुदित मन से कर।

0: अय्या सुकु सुकु
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु

0: रेडियो मंधावन 90.8 FM, always heart touching.
1: होई गवा मन मा मोरे तिरछी.

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: आप समझते क्या है अपने आप को?
2: जी
1: मैं आपको ऐसी नजर आती हूँ?
2: अजी मैम साहब, किसने कहा आपसे ये आपकी तस्वीर है?
1: मैं सब जानती हूँ, आपने जानबूझ के बनाई है.
2: अच्छा तो ये लीजिए, घर आपकी तस्वीर किसी दूसरे के घर में कैसे लग सकती है?

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी।

0: पीजिए सरकार।
1: फाइनल थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

तर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं सुनो भाई साधो. दोस्तों, कभी आपका हुआ है इतना खूबसूरत या वे देख लिया हो कि जब पूछे कैसा था ना हो, आप बस मुस्कुरा दें या खामोश हो जाएं. अक्सर हम परमात्मा के बारे में बड़े बड़े विशेष करते हैं. वह सर्वशक्तिमान हैं, विरापक हैं, तेजस्वी हैं. लेकिन कबीर साहब आज एक बड़ी ईमानदारी भरी बात कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि मैं उस मालिक को कोई विशेषण दे नहीं सकता. अगर मैं उसे कुछ कहता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा. आज का दोहा शब्दों की लाचारी और अनुभव की विशालता का है. आइए जानते हैं उस मौन के पीछे का सच. भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ. मैं क्या जानू राम को, नैनू कबहू न दीठ. भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ. भारी कहूँ तो बहु डरो,

0: रीड। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, भारी कहूँ तो बहु डरो। अगर मैं उस परमात्मा को बहुत भारी, बहुत बड़ा या विराट कहूँ तो मुझे डर लगता है। डर इसलिए नहीं क्योंकि भारी कहने से वह मुझसे बहुत दूर हो जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ जिसे मैं छू नहीं सकता। और हल्का कहूँ तो झूठ, अगर मैं उसे अपने जैसा साधारण या हल्का कहूँ तो यह सरासर झूठ होगा, क्योंकि वह तो इस पूरी सृष्टि का आधार है। कबीर अपनी सीमा स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं क्या जानूं राम को, मैं उस राम को, उस तत्व को भला कैसे जान सकता हूँ। नैनू कबहू ना दीठ, क्योंकि इस चर्म चक्षुओं से, इन भौतिक आँखों से तो मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। कबीर यहाँ यह समझा रहे हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे आप तौल सकें या जिसका वर्णन कर सकें, वह तो एक एहसास है। जिसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले तो वह स्वाद तो जानता है पर उसे बयां नहीं कर सकता। परमात्मा का अनुभव भी वैसा ही है, जो जानता है वह बोल नहीं पाता और जो बोलता है वह शायद पूरी तरह जानता नहीं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा गौर कीजिए, हम कितनी आसानी से ईश्वर के नाम पर दावे करने लगते हैं। हम उसे अपनी छोटी सी बुद्धि के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, पर क्या असीम को सीमाओं में बांधा जा सकता है? आज कोशिश कीजिए उस अज्ञान को स्वीकार करने की। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ की परिभाषा जानते हो। कभी कभी बस यह कह देना कि मैं नहीं जानता, ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। उस राम को परिभाषाओं में मत ढूंढिए, उसे अपनी धड़कनों में, अपनी सांसों के मौन में महसूस कीजिए। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से उसकी पहचान शुरू होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज एट टचिंग।
2: मम्मी के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरी। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: दो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: पीजे सरकार।
1: कहने कहीं की मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात

0: Radio Manbhavan 90.8 FM always heart touching.
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM